0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं ताकि जीवन के लिए अति आवश्यक तत्व जल का सही और टिकाऊ प्रबंधन हो सके तथा सभी के लिए इसकी आपूर्ति समान रूप से हो सके। आमीन। नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय, भक्ति गीत और समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता हैं जूलियट क्रिस्टोफर और सिस्टर उषा तिर्की। पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय कार्यक्रम के अंतर्गत इस समय हम बाइबल धर्मग्रंथ के प्राचीन व्यवस्थान में निहित उपदेशक ग्रंथ की व्याख्या में संलग्न हैं।

जिस तरह तुम नहीं जानते कि प्राण कहाँ जाते और माता के गर्भ में शरीर कैसे बनता है, उसी तरह तुम ईश्वर का कार्य नहीं समझ सकते जिसने सब कुछ को बनाया है। तुम प्रातः अपने खेत में बीज बो और संध्या तक काम करते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हें किस काम में सफलता मिलेगी, इसमें या उसमें अथवा दोनों में। श्रोताओं, ये थे उपदेशक ग्रंथ के 11वें अध्याय के 5वें और 6वें पदों के शब्द। विगत सप्ताह इन्हीं पदों की व्याख्या से हमने पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय कार्यक्रम समाप्त किया था। इन शब्दों से उपदेशक सुलेमान हमें फिर से मानवीय ज्ञान की सीमाओं का स्मरण दिलाता है। हम नहीं जानते कि प्राण कहाँ जाते और माता के गर्भ में शरीर कैसे बनता है। इसी तरह पृथ्वी पर ईश्वर के कार्य और उनके काम करने के पहलुओं को समझना मानव बुद्धि के परे है। माता के गर्भ में जीवन का प्रारंभ होता है, जो जन्म तक मनुष्य के लिए एक रहस्य ही बना रहता है। इन पदों में इस तथ्य को भी रेखांकित किया गया है कि सृष्टिकर्ता ईश्वर के कार्यों की थाह लेना हम मनुष्यों के लिए असंभव है। हवा के प्रवाह का उदाहरण देकर उपदेशक हमसे और युग युगांतर तक के मनुष्यों से ईश्वर के कार्यों के प्रति विनम्र बने रहने का आर्थ निवेदन करता है। उपदेशक का आग्रह है कि मनुष्य प्रातः अपने खेत में बीज बोए और संध्या तक काम करता रहे, क्योंकि मनुष्य यह नहीं जानता कि किस काम में उसे सफलता मिलेगी। इस पद में कृषि कार्य की छवि का उपयोग कर उपदेशक हमसे हर तरह के कामों के संपादन हेतु प्रोत्साहित करता है। भले ही काम कोई भी हो, वह भले ही सुबह किया जाए या शाम को, किसी भी समय काम से पीछे न हटा जाए। हर काम के लिए मनुष्य तत्पर रहे। मनुष्य किसी भी काम को करने से पीछे नहीं हटे, क्योंकि केवल काम करने के बाद ही वह फल की आशा कर सकता है। उपदेशक सुलेमान हम सबको अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करता है, ताकि हम विश्वासपूर्वक अपने समस्त कामों का संपादन करें, क्योंकि ऐसा कर ही हम सफलता का और अच्छे परिणाम का दीदार कर पाएंगे। इस प्रकार श्रोताओं, उपदेशक ग्रंथ का 11वां अध्याय हमें उदारता का आलिंगन करने के लिए आमंत्रित करता है। वह हमें स्वतंत्रता पूर्वक दान करने और अन्यों में अपनी संपत्ति साझा करने के लिए आमंत्रित करता है। हालांकि हमारी उदारता और हमारी भलाई का पुरस्कार हमें तुरंत नहीं दिखता, किंतु पुरस्कार अवश्य मिलेगा। विशेषकर इस अध्याय का 5वां पद स्मरण दिलाता है कि मानवीय समझ सीमित है और सृष्टिकर्ता ईश्वर के कार्यों को पूर्णतः बुद्धिगम्य करने में असमर्थ है। और 6वें पद की शिक्षा है कि प्रज्ञा और समझदारी के साथ हम अपने सभी कामों का संपादन करें तथा जीवन की अनिश्चितताओं के बावजूद मेहनत करते रहें।

और अब आइए 11वें अध्याय के अंतिम चार पद यानी कि 7 से लेकर 10 तक के पदों पर दृष्टिपात करें। इन पदों में उपदेशक ने जीवन के आनंद का विवरण दिया है। कहता है, ज्योति मधुर लगती है और आंखें सूर्य का प्रकाश देखकर प्रसन्न होती हैं। यदि मनुष्य वर्षों तक जीता रहता है तो उन सबों का आनंद मनाए, किंतु उसे याद रहे कि बुरे दिनों का अभाव नहीं और बाद में जो आएगा वह सब व्यर्थ है। युवक, अपनी जवानी में आनंद मनाओ, अपनी युवावस्था में मनोरंजन करो, अपने हृदय और अपनी आंखों की अभिलाषा पूरी करो, किंतु याद रखो कि ईश्वर तुम्हारे आचरण का लेखा मांगेगा। अपने हृदय से शोक को निकाल दो और अपने शरीर से कष्ट दूर कर दो, क्योंकि जीवन का प्रभात क्षण भंगुर है। श्रोताओ, सूर्य रोशनी प्रदान करता जिससे चित्त प्रसन्न हो जाता है तथा अंधकार समाप्त हो जाता है। उपदेशक का परामर्श है कि यदि किसी व्यक्ति की उम्र लंबी है, यदि वह दीर्घ काल तक जीता है, तो वह अपने जीवन के सभी वर्षों का आनंद उठाए, किंतु यह कदापि न भूले कि अच्छे दिनों के बाद बुरे दिनों का भी अभाव नहीं होगा। वस्तुतः उपदेशक का कहना है कि जीवन एक अनमोल वरदान है जिसका आनंद लिया जाना चाहिए, साथ ही भविष्य में आने वाली कठिनाइयों और समय की क्षण भंगुरता की सच्चाई को भी स्वीकार किया जाना चाहिए। श्रोताओं, 11वें अध्याय के 7वें पद में हमें एक बदलाव नजर आता है। यह पद जीवन की सरलता और उसके प्रतिदिन के वरदान होने का जश्न मनाता और लोगों को मुश्किल समय में यानी कि बीमारी का समय आने से पहले अथवा वृद्धावस्था के आने से पहले जीती जागती दुनिया की कद्र करने के लिए प्रोत्साहन देता है। इस प्रकार श्रोताओं, सूर्य और उसका प्रकाश जीवन का प्रतीक और मनुष्य को दिया गया अनमोल वरदान है। मनुष्य को हर दिन के लिए ईश्वर के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करना चाहिए। फिर उक्त पद हमसे अपने समय की कीमत समझने और रोजमर्रा के पलों में खुशी ढूंढने का आग्रह करते हैं, साथ ही इसमें सच्चाई के साथ संतुलन रखने का भी अनुरोध किया गया है। उपदेशक स्मरण दिलाता है कि अच्छे दिन आते हैं, किंतु उनके बाद बुरे का आना भी संभव है। ठीक उसी प्रकार जैसे कि हर दिन के उजाले के बाद रात का अंधकार अवश्यम भावी होता है। अस्तु, उपदेशक का परामर्श है कि अपने अच्छे दिनों में कुछ ऐसा करो जिससे कि तुम्हारे बुरे दिनों में भी तुम्हारा धैर्य न टूटे और साहस पूर्वक तुम सारी कठिनाइयों का सामना कर सको। आगे 11वें अध्याय के 9वें और 10वें पदों में उपदेशक युवकों का आह्वान कर कहता है कि जवानी में आप अवश्य आनंद मनाओ, मनोरंजन करो, किंतु अपना आचरण शुद्ध रखो। यह मत भूलो कि अपने सभी कार्यों के लिए तुम्हें उत्तर देना होगा। वह कहता है कि अपने हृदय से शोक को निकाल दो और अपने शरीर से कष्ट को दूर कर दो, क्योंकि जीवन का प्रभात क्षण भंगुर है। उपदेशक युवाओं को सावधान करता है कि वे अपनी जवानी का मजा अवश्य लें, स्वतंत्रता से जिएं, किंतु इस बात को कदापि न भूलें कि उन्हें अपने किए प्रत्येक कर्म का फल मिलेगा। यह कदापि न भूलें कि ईश्वर उन्हें उनके चयनों और उनके निर्णयों के लिए जिम्मेदार ठहराएंगे। प्रिय युवाओं, जवानी और जोश जल्दी ही बीत जाता है, इसलिए यौवन के वर्षों को हम कड़वाहट, नाराजगी अथवा बेमतलब के बोझ पर बर्बाद न करें, बल्कि इन अच्छे वर्षों का सदुपयोग करें। इन वर्षों में आजादी और आनंद के बीच कभी भी अपनी जिम्मेदारियों को न भुलाएं, नियमों का अनुपालन करें, व्यवस्था कायम करने में योगदान दें तथा अपने एवं अपने आस पड़ोस के लोगों का जीवन सुखमय बनाएं।

आप वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं, लीजिए प्रस्तुत है समाचार। पोप लियो चौदहवें ने बृहस्पतिवार को हंगरी के प्रधानमंत्री पीटर मग्यार का वैटिकन में स्वागत किया। वैटिकन प्रेस कार्यालय के अनुसार हंगरी के प्रधानमंत्री ने पोप के साथ मुलाकात करने के बाद वैटिकन विदेश सचिव महाधर्मदर्श पॉल रिचर्ड गलाघर से भी मुलाकात की। प्रेस कार्यालय से जारी बयान में कहा गया कि वैटिकन राज्य सचिवालय में सौहार्दपूर्ण बातचीत में अच्छे द्विपक्षीय रिश्तों एवं देश के जीवन में काथी कलीसिया के योगदान पर खुशी जाहिर की गई। फिर बातचीत हंगरी के सामाजिक आर्थिक हालात और आपसी लाभ के मुद्दों पर केंद्रित रही, खासकर शिक्षा एवं दुनिया के सबसे कमजोर ख्रिस्त समुदायों की सुरक्षा के बारे में। चर्चा में मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं, खासकर यूक्रेन और मिडल ईस्ट में संघर्षों पर विचारों का आदान प्रदान हुआ, जिसमें शांति को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की तरफ से लगातार बढ़ती प्रतिबद्धता की उम्मीद जताई गई। पोप लियो चौदहवें ने अमेरिकी महाधर्मदर्श फुल्टन शीन की धन्य घोषणा से पहले उन्हें श्रद्धांजलि दी है और उनकी मीडिया की प्रेरिताई की सराहना की है। सेंट पेट्रस महागिरजाघर के प्रांगण में बुधवार को आम दर्शन समारोह में बोलते हुए पोप ने बृहस्पतिवार को होने वाली धन्य घोषणा को याद किया और महाधर्मदर्श शीन को प्रचार में लगे सभी लोगों के लिए एक मिसाल बताया। संत पापा ने बुधवार को कहा, कल मिसौरी के संत लुइस में आदरणीय फुल्टन शीन को धन्य घोषित किया जाएगा। उन्होंने कहा, मीडिया के माध्यम से अपने सुसमाचार प्रचार के काम के लिए लोकप्रिय इस पौत्र धर्मदक्ष का उदाहरण और बीच बचाव कई और लोगों के लिए भी इसी तरह खुशी और जोश के साथ सुसमाचार का संदेश फैलाने के नए तरीके खोजने हेतु प्रेरित करें। धन्य घोषणा गुरुवार 24 सितंबर 2026 को संत लुइस में होगा। कार्डिनल लुइस अंतोनियो तागले सुसमाचार प्रचार विभाग के प्रो प्रीफेक्ट धन्य घोषणा समारोह की अध्यक्षता करेंगे। 1895 में जन्मे और प्यास से अंकल फुल्टी के नाम से मशहूर महाधर्मदर्श शीन अपने टेलीविजन कार्यक्रम लाइफ इज वर्थ लिविंग के जरिए अमेरिकी परिवारों में एक लोकप्रिय पहचान बन गए। यह कार्यक्रम 1952 से 1957 तक चला और इसने लाखों दर्शकों को आकर्षित किया। महाधर्मदर्श शीन, जिन्होंने वॉशिंगटन और बेल्जियम में यूनिवर्सिटी ऑफ लुबेन में पढ़ाई की, 1953 में सबसे उत्कृष्ट व्यक्तित्व का सम्मान पाकर एमी पुरस्कार जीता। 1966 में संत पापा पॉल षष्ठम ने उन्हें न्यूयॉर्क में रोचेस्टर का धर्माध्यक्ष नियुक्त किया। उन्होंने 3 साल बाद धर्म प्रांत के नेतृत्व से इस्तीफा दे दिया, लेकिन दिसंबर 1979 में अपनी मृत्यु तक अपनी सार्वजनिक सेवा जारी रखी। महाधर्मदर्श फुल्टन जे शीन एक दर्शन शास्त्री, ईश शास्त्री, पुरोहित और धर्माध्यक्ष, लेखक, कलीसिया के मिशनरी गतिविधि के समर्थक और रेडियो एवं टेलीविजन का इस्तेमाल करके सुसमाचार प्रचार करने वाले आधुनिक सुसमाचार प्रचारक थे। उन्होंने अपनी बौद्धिक क्षमता को, गहरी आध्यात्मिक आस्था और धर्म की सच्चाइयों को साफ साफ बताने के कमाल की काबिलियत के साथ मिलाया। वे प्रतिदिन पौत्र संस्कार की आराधना के लिए उत्साहित थे, जिससे उनका यीशु ख्रिस्त के साथ एक गहरा व्यक्तिगत संबंध बना। पीटर जॉन शीन का जन्म 8 मई 1895 को एलियनोस के एल पासो में हुआ था, जो न्यूटन एवं डेलिया शीन के 4 बेटों में से सबसे बड़े थे। एक पक्के कार्तिक परिवार में पले बढ़े फुल्टन ने कम उम्र में ही पुरोहित बनने का मन बना लिया था। उनका पुरोहिताभिषेक 20 सितंबर 1919 को प्योरिया धर्म प्रांत के लिए हुआ। उनकी बौद्धिक क्षमता को पहचानते हुए उनके अधिकारियों ने उन्हें आगे की पढ़ाई के लिए यूरोप भेजा। 1923 में उन्होंने बेल्जियम में कार्तिक यूनिवर्सिटी ऑफ लुबेन से दर्शन शास्त्र में डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की। कलीसिया के दर्शन शास्त्र एवं ईश शास्त्र परंपरा पर आधारित उनकी शैक्षणिक प्रशिक्षण ने उन्हें शिक्षा और सुसमाचार प्रचार की आजीवन प्रेरिताई के लिए तैयार किया। पढ़ाई के बाद शीन के धर्माध्यक्ष ने उन्हें पियोरिया के एक डाउनटाउन पल्ली में पल्ली पुरोहित नियुक्त किया, जहां वे उन लोगों को उपदेश देने और प्रेरित करने में सफल रहे जो धर्म बदल रहे थे। आज्ञा मानने की इस परीक्षा के बाद शीन के धर्माध्यक्ष ने उन्हें वॉशिंगटन डीसी में द कैथलिक यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका में दर्शन शास्त्र एवं ई शास्त्र पढ़ाने के लिए भेजा। उन्हें बौद्धिक अनुशासन के साथ साथ प्रेरिताई की बढ़ती चिंता भी थी। उन्होंने कलीसिया की शिक्षाओं को आम लोगों के लिए समझने लायक और दिलचस्प बनाने की कोशिश की। अपने पुरोहित जीवन में शीन ने प्रार्थना को अपनी प्रेरिताई के केंद्र में रखा।
परम पावन संस्कार की प्रतिदिन एक घंटे की आराधना उनके आध्यात्मिक जीवन का खास अभ्यास था। उन्होंने प्रार्थना के समय को अपने पुरोहिती पहचान और अपनी प्रेरिताई के सफल होने के लिए जरूरी माना। उन्होंने अपने पुरोहिताभिषेक के दिन से बौद्ध संस्कार के सामने रोज एक घंटा व्यतीत किया। उनकी प्रार्थना, जिसे उन्होंने अपना दिन बनाने वाला घंटा बताया, सुसमाचार और यीशु ख्रिस्त के व्यक्तित्व के बारे में उनकी गहरी समझ का स्रोत थी। शेन की सार्वजनिक प्रेरिताई आधुनिक संचार माध्यमों द्वारा फैले। 1930 में अपनी प्रेरिताई शुरू करते हुए उन्होंने द कैथोलिक आवर नामक एक रेडियो कार्यक्रम पेश किया, जिसने पूरे अमेरिका में कैथोलिक धर्म शिक्षा को घरों तक पहुंचाया। उनके स्पष्ट तर्क, खूबसूरत प्रस्तुति एवं प्रेरितिक उत्साह ने 4 मिलियन से ज्यादा लोगों को आकर्षित किया। उन्हें उनकी बौद्धिक उदारता के लिए भी पहचाना जाता था, जिसमें वे मुश्किल सच को साफ तरीके से पेश करते थे और आधुनिक समाज की चुनौतियों के बीच हिम्मत की जरूरत को नजरअंदाज नहीं करते थे। उनके साहित्यिक कार्य उनके प्रसारण कैरियर के साथ विकसित हुए। उनकी 66 प्रकाशित किताबों में से लाइफ ऑफ क्राइस्ट को यीशु के व्यक्तित्व एवं सुसमाचार को समझने के लिए उनके सबसे प्रेरणादायक कार्यों में से एक माना जाता है। यूनेस्को की उपनिदेशक जनरल आशा रेनर ने वैटिकन न्यूज से बात करते हुए पोप लियो 14वें के 25 सितंबर को फ्रांस की प्रेरित यात्रा के दौरान यूनेस्को के दौरे की अहमियत के बारे बताया और इस बात पर जोर दिया कि कैसे बहुपक्षीय संस्थाएं शांति निर्माण में मदद कर सकती हैं। 1980 में पोप जॉन पॉल द्वितीय ने यूनेस्को में एक ऐतिहासिक भाषण दिया था। यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी है, जो शिक्षा, विज्ञान एवं संस्कृति के माध्यम से शांति और सुरक्षा स्थापित करने के लिए समर्पित है। 40 साल बाद, जब दुनिया में झगड़े और ध्रुवीकरण जारी हैं, बहुपक्षीय संस्थाएं संकट का सामना कर रही हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का तेजी से विकास चिंता का कारण बन रहा है। पोप लियो 14वें पेरिस में संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी यूनेस्को का दौरा करेंगे और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय एवं यूनेस्को साझेदारों और सहयोगी लोगों को संबोधित करेंगे। और इसी के साथ हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।

0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं ताकि जीवन के लिए अति आवश्यक तत्व जल का सही और टिकाऊ प्रबंधन हो सके तथा सभी के लिए इसकी आपूर्ति समान रूप से हो सके। आमीन। नमस्कार श्रोताओ, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय, भक्ति गीत और समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता हैं जूलियट क्रिस्टोफर और सिस्टर उषा तिर्की। पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय कार्यक्रम के अंतर्गत इस समय हम बाइबल धर्मग्रंथ के प्राचीन व्यवस्थान में निहित उपदेशक ग्रंथ की व्याख्या में संलग्न हैं।

जिस तरह तुम नहीं जानते कि प्राण कहाँ जाते और माता के गर्भ में शरीर कैसे बनता है, उसी तरह तुम ईश्वर का कार्य नहीं समझ सकते जिसने सब कुछ को बनाया है। तुम प्रातः अपने खेत में बीज बो और संध्या तक काम करते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हें किस काम में सफलता मिलेगी, इसमें या उसमें अथवा दोनों में। श्रोताओं, ये थे उपदेशक ग्रंथ के 11वें अध्याय के 5वें और 6वें पदों के शब्द। विगत सप्ताह इन्हीं पदों की व्याख्या से हमने पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय कार्यक्रम समाप्त किया था। इन शब्दों से उपदेशक सुलेमान हमें फिर से मानवीय ज्ञान की सीमाओं का स्मरण दिलाता है। हम नहीं जानते कि प्राण कहाँ जाते और माता के गर्भ में शरीर कैसे बनता है। इसी तरह पृथ्वी पर ईश्वर के कार्य और उनके काम करने के पहलुओं को समझना मानव बुद्धि के परे है। माता के गर्भ में जीवन का प्रारंभ होता है, जो जन्म तक मनुष्य के लिए एक रहस्य ही बना रहता है। इन पदों में इस तथ्य को भी रेखांकित किया गया है कि सृष्टिकर्ता ईश्वर के कार्यों की थाह लेना हम मनुष्यों के लिए असंभव है। हवा के प्रवाह का उदाहरण देकर उपदेशक हमसे और युग युगांतर तक के मनुष्यों से ईश्वर के कार्यों के प्रति विनम्र बने रहने का अर्थ निवेदन करता है। उपदेशक का आग्रह है कि मनुष्य प्रातः अपने खेत में बीज बोए और संध्या तक काम करता रहे, क्योंकि मनुष्य यह नहीं जानता कि किस काम में उसे सफलता मिलेगी। इस पद में कृषि कार्य की छवि का उपयोग कर उपदेशक हमसे हर तरह के कामों के संपादन हेतु प्रोत्साहित करता है। भले ही काम कोई भी हो, वह भले ही सुबह किया जाए या शाम को, किसी भी समय काम से पीछे न हटा जाए। हर काम के लिए मनुष्य तत्पर रहे। मनुष्य किसी भी काम को करने से पीछे नहीं हटे, क्योंकि केवल काम करने के बाद ही वह फल की आशा कर सकता है। उपदेशक सुलेमान हम सबको अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करता है, ताकि हम विश्वासपूर्वक अपने समस्त कामों का संपादन करें, क्योंकि ऐसा कर ही हम सफलता का और अच्छे परिणाम का दीदार कर पाएंगे। इस प्रकार श्रोताओं, उपदेशक ग्रंथ का 11वां अध्याय हमें उदारता का आलिंगन करने के लिए आमंत्रित करता है। वह हमें स्वतंत्रता पूर्वक दान करने और अन्यों में अपनी संपत्ति साझा करने के लिए आमंत्रित करता है। हालांकि हमारी उदारता और हमारी भलाई का पुरस्कार हमें तुरंत नहीं दिखता, किंतु पुरस्कार अवश्य मिलेगा। विशेषकर इस अध्याय का 5वां पद स्मरण दिलाता है कि मानवीय समझ सीमित है और सृष्टिकर्ता ईश्वर के कार्यों को पूर्णतः बुद्धिगम्य करने में असमर्थ है। और 6वें पद की शिक्षा है कि प्रज्ञा और समझदारी के साथ हम अपने सभी कामों का संपादन करें तथा जीवन की अनिश्चितताओं के बावजूद मेहनत करते रहें।

और अब आइए 11वें अध्याय के अंतिम चार पद यानी कि 7 से लेकर 10 तक के पदों पर दृष्टिपात करें। इन पदों में उपदेशक ने जीवन के आनंद का विवरण दिया है। कहता है, ज्योति मधुर लगती है और आंखें सूर्य का प्रकाश देखकर प्रसन्न होती हैं। यदि मनुष्य वर्षों तक जीता रहता है तो उन सबों का आनंद मनाए, किंतु उसे याद रहे कि बुरे दिनों का अभाव नहीं और बाद में जो आएगा वह सब व्यर्थ है। युवक, अपनी जवानी में आनंद मनाओ, अपनी युवावस्था में मनोरंजन करो, अपने हृदय और अपनी आंखों की अभिलाषा पूरी करो, किंतु याद रखो कि ईश्वर तुम्हारे आचरण का लेखा मांगेगा। अपने हृदय से शोक को निकाल दो और अपने शरीर से कष्ट दूर कर दो, क्योंकि जीवन का प्रभात क्षण भंगुर है। श्रोताओ, सूर्य रोशनी प्रदान करता जिससे चित्त प्रसन्न हो जाता है तथा अंधकार समाप्त हो जाता है। उपदेशक का परामर्श है कि यदि किसी व्यक्ति की उम्र लंबी है, यदि वह दीर्घ काल तक जीता है, तो वह अपने जीवन के सभी वर्षों का आनंद उठाए, किंतु यह कदापि न भूले कि अच्छे दिनों के बाद बुरे दिनों का भी अभाव नहीं होगा। वस्तुतः उपदेशक का कहना है कि जीवन एक अनमोल वरदान है जिसका आनंद लिया जाना चाहिए, साथ ही भविष्य में आने वाली कठिनाइयों और समय की क्षण भंगुरता की सच्चाई को भी स्वीकार किया जाना चाहिए। श्रोताओ, 11वें अध्याय के 7वें पद में हमें एक बदलाव नजर आता है। यह पद जीवन की सरलता और उसके प्रतिदिन के वरदान होने का जश्न मनाता और लोगों को मुश्किल समय में यानी कि बीमारी का समय आने से पहले अथवा वृद्धावस्था के आने से पहले जीती जागती दुनिया की कद्र करने के लिए प्रोत्साहन देता है। इस प्रकार श्रोताओ, सूर्य और उसका प्रकाश जीवन का प्रतीक और मनुष्य को दिया गया अनमोल वरदान है। मनुष्य को हर दिन के लिए ईश्वर के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करना चाहिए। फिर उक्त पद हमसे अपने समय की कीमत समझने और रोजमर्रा के पलों में खुशी ढूंढने का आग्रह करते हैं, साथ ही इसमें सच्चाई के साथ संतुलन रखने का भी अनुरोध किया गया है। उपदेशक स्मरण दिलाता है कि अच्छे दिन आते हैं, किंतु उनके बाद बुरे का आना भी संभव है। ठीक उसी प्रकार जैसे कि हर दिन के उजाले के बाद रात का अंधकार अवश्यंभावी होता है। अस्तु, उपदेशक का परामर्श है कि अपने अच्छे दिनों में कुछ ऐसा करो जिससे कि तुम्हारे बुरे दिनों में भी तुम्हारा धैर्य न टूटे और साहस पूर्वक तुम सारी कठिनाइयों का सामना कर सको। आगे 11वें अध्याय के 9वें और 10वें पदों में उपदेशक युवकों का आह्वान कर कहता है कि जवानी में आप अवश्य आनंद मनाओ, मनोरंजन करो, किंतु अपना आचरण शुद्ध रखो। यह मत भूलो कि अपने सभी कार्यों के लिए तुम्हें उत्तर देना होगा। वह कहता है कि अपने हृदय से शोक को निकाल दो और अपने शरीर से कष्ट को दूर कर दो, क्योंकि जीवन का प्रभात क्षण भंगुर है। उपदेशक युवाओं को सावधान करता है कि वे अपनी जवानी का मजा अवश्य लें, स्वतंत्रता से जिएं, किंतु इस बात को कदापि न भूलें कि उन्हें अपने किए प्रत्येक कर्म का फल मिलेगा। यह कदापि न भूलें कि ईश्वर उन्हें उनके चयनों और उनके निर्णयों के लिए जिम्मेदार ठहराएंगे। प्रिय युवाओं, जवानी और जोश जल्दी ही बीत जाता है, इसलिए यौवन के वर्षों को हम कड़वाहट, नाराजगी अथवा बेमतलब के बोझ पर बर्बाद न करें, बल्कि इन अच्छे वर्षों का सदुपयोग करें। इन वर्षों में आज़ादी और आनंद के बीच कभी भी अपनी जिम्मेदारियों को न भुलाएं, नियमों का अनुपालन करें, व्यवस्था कायम करने में योगदान दें तथा अपने एवं अपने आस पड़ोस के लोगों का जीवन सुखमय बनाएं।

आप वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। पोप लियो चौदहवें ने बृहस्पतिवार को हंगरी के प्रधानमंत्री पीटर मग्यार का वैटिकन में स्वागत किया। वैटिकन प्रेस कार्यालय के अनुसार हंगरी के प्रधानमंत्री ने पोप के साथ मुलाकात करने के बाद वैटिकन विदेश सचिव महाधर्माध्यक्ष पॉल रिचर्ड गलाघा से भी मुलाकात की। प्रेस कार्यालय से जारी बयान में कहा गया कि वैटिकन राज्य सचिवालय में सौहार्दपूर्ण बातचीत में अच्छे द्विपक्षीय रिश्तों एवं देश के जीवन में कार्थिक अलीसा के योगदान पर खुशी जाहिर की गई। फिर बातचीत हंगरी के सामाजिक आर्थिक हालात और आपसी लाभ के मुद्दों पर केंद्रित रही, खासकर शिक्षा एवं दुनिया के सबसे कमजोर ख्रिस्त समुदायों की सुरक्षा के बारे में। चर्चा में मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं, खासकर यूक्रेन और मिडल ईस्ट में संघर्षों पर विचारों का आदान प्रदान हुआ, जिसमें शांति को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की तरफ से लगातार बढ़ती प्रतिबद्धता की उम्मीद जताई गई। पोप लियो चौदहवें ने अमेरिकी महाधर्माध्यक्ष फुल्टन शीन की धन्या घोषणा से पहले उन्हें श्रद्धांजलि दी है और उनकी मीडिया की प्रेरिताय की सराहना की है। सेंट पेट्रस महागिरजाघर के प्रांगण में बुधवार को आम दर्शन समारोह में बोलते हुए पोप ने बृहस्पतिवार को होने वाली धन्या घोषणा को याद किया और महाधर्माध्यक्ष शीन को प्रचार में लगे सभी लोगों के लिए एक मिसाल बताया। संत पापा ने बुधवार को कहा, कल मिसौरी के संत लुइस में आदरणीय फुल्टन शीन को धन्य घोषित किया जाएगा। उन्होंने कहा, मीडिया के माध्यम से अपने सुसमाचार प्रचार के काम के लिए लोकप्रिय इस पौत्र धर्मदक्ष का उदाहरण और बीच बचाव कई और लोगों के लिए भी इसी तरह खुशी और जोश के साथ सुसमाचार का संदेश फैलाने के नए तरीके खोजने हेतु प्रेरित करें। धन्या घोषणा गुरुवार 24 सितंबर 2026 को संत लुइस में होगा। कार्डिनल लुइस अंतोनियो तागले सुसमाचार प्रचार विभाग के प्रोप प्रीफेक्ट धन्या घोषणा समारोह की अध्यक्षता करेंगे। 1895 में जन्मे और प्यास से अंकल फुल्टी के नाम से मशहूर महाधर्माध्यक्ष शीन अपने टेलीविजन कार्यक्रम लाइफ इज वर्थ लिविंग के जरिए अमेरिकी परिवारों में एक लोकप्रिय पहचान बन गए। यह कार्यक्रम 1952 से 1957 तक चला और इसने लाखों दर्शकों को आकर्षित किया। महाधर्माध्यक्ष शीन, जिन्होंने वॉशिंगटन और बेल्जियम में यूनिवर्सिटी ऑफ लुबेन में पढ़ाई की, 1953 में सबसे उत्कृष्ट व्यक्तित्व का सम्मान पाकर एमी पुरस्कार जीता। 1966 में संत पापा पॉल षष्ठम ने उन्हें न्यूयॉर्क में रोचेस्टर का धर्माध्यक्ष नियुक्त किया। उन्होंने 3 साल बाद धर्म प्रांत के नेतृत्व से इस्तीफा दे दिया, लेकिन दिसंबर 1979 में अपनी मृत्यु तक अपनी सार्वजनिक सेवा जारी रखी। महाधर्माध्यक्ष फुल्टन जे शीन एक दर्शन शास्त्री, ईश शास्त्री, पुरोहित और धर्माध्यक्ष, लेखक, कलीसिया के मिशनरी गतिविधि के समर्थक और रेडियो एवं टेलीविजन का इस्तेमाल करके सुसमाचार प्रचार करने वाले आधुनिक सुसमाचार प्रचारक थे। उन्होंने अपनी बौद्धिक क्षमता को गहरी आध्यात्मिक आस्था और धर्म की सच्चाइयों को साफ साफ बताने के कमाल की काबिलियत के साथ मिलाया। वे प्रतिदिन पौत्र संस्कार की आराधना के लिए उत्साहित थे, जिससे उनका यीशु ख्रिस्त के साथ एक गहरा व्यक्तिगत संबंध बना। पीटर जॉन शीन का जन्म 8 मई 1895 को एलियनोस के एल पासो में हुआ था, जो न्यूटन एवं डेलिया शीन के 4 बेटों में से सबसे बड़े थे। एक पक्के कार्तिक परिवार में पले बढ़े फुल्टन ने कम उम्र में ही पुरोहित बनने का मन बना लिया था। उनका पुरोहिताभिषेक 20 सितंबर 1919 को पियोरिया धर्म प्रांत के लिए हुआ। उनकी बौद्धिक क्षमता को पहचानते हुए उनके अधिकारियों ने उन्हें आगे की पढ़ाई के लिए यूरोप भेजा। 1923 में उन्होंने बेल्जियम में कार्तिक यूनिवर्सिटी ऑफ लुबेन से दर्शन शास्त्र में डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की। कलीसिया के दर्शन शास्त्र एवं ईश शास्त्र परंपरा पर आधारित उनकी शैक्षणिक प्रशिक्षण ने उन्हें शिक्षा और सुसमाचार प्रचार की आजीवन प्रेरिताई के लिए तैयार किया। पढ़ाई के बाद शीन के धर्माध्यक्ष ने उन्हें पियोरिया के एक डाउनटाउन पल्ली में पल्ली पुरोहित नियुक्त किया, जहां वे उन लोगों को उपदेश देने और प्रेरित करने में सफल रहे जो धर्म बदल रहे थे। आज्ञा मानने की इस परीक्षा के बाद शीन के धर्माध्यक्ष ने उन्हें वॉशिंगटन डीसी में द कैथलिक यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका में दर्शन शास्त्र एवं ईश शास्त्र पढ़ाने के लिए भेजा। उन्हें बौद्धिक अनुशासन के साथ साथ प्रेरिताई की बढ़ती चिंता भी थी। उन्होंने कलीसिया की शिक्षाओं को आम लोगों के लिए समझने लायक और दिलचस्प बनाने की कोशिश की। अपने पुरोहित जीवन में शीन ने प्रार्थना को अपनी प्रेरिताई के केंद्र में रखा।
परम पावन संस्कार की प्रतिदिन एक घंटे की आराधना उनके आध्यात्मिक जीवन का खास अभ्यास था। उन्होंने प्रार्थना के समय को अपने पुरोहिती पहचान और अपनी प्रेरिताई के सफल होने के लिए जरूरी माना। उन्होंने अपने पुरोहिताभिषेक के दिन से ही पौत्र संस्कार के सामने रोज एक घंटा व्यतीत किया। उनकी प्रार्थना, जिसे उन्होंने अपना दिन बनाने वाला घंटा बताया, सुसमाचार और यीशु ख्रिस्त के व्यक्तित्व के बारे में उनकी गहरी समझ का स्रोत थी। शेन की सार्वजनिक प्रेरिताई आधुनिक संचार माध्यमों द्वारा फैली। 1930 में अपनी प्रेरिताई शुरू करते हुए उन्होंने द कैथोलिक आवर नामक एक रेडियो कार्यक्रम पेश किया, जिसने पूरे अमेरिका में कैथोलिक धर्म शिक्षा को घरों तक पहुंचाया। उनके स्पष्ट तर्क, खूबसूरत प्रस्तुति एवं प्रेरितिक उत्साह ने 4 मिलियन से ज्यादा लोगों को आकर्षित किया। उन्हें उनकी बौद्धिक उदारता के लिए भी पहचाना जाता था, जिसमें वे मुश्किल सच को साफ तरीके से पेश करते थे और आधुनिक समाज की चुनौतियों के बीच हिम्मत की जरूरत को नजरअंदाज नहीं करते थे। उनके साहित्यिक कार्य उनके प्रसारण कैरियर के साथ विकसित हुए। उनकी 66 प्रकाशित किताबों में से लाइफ ऑफ क्राइस्ट को यीशु के व्यक्तित्व एवं सुसमाचार को समझने के लिए उनके सबसे प्रेरणादायक कार्यों में से एक माना जाता है। यूनेस्को की उपनिदेशक जनरल आशा रेनर ने वैटिकन न्यूज से बात करते हुए पोप लियो 14वें के 25 सितंबर को फ्रांस की प्रेरितिक यात्रा के दौरान यूनेस्को के दौरे की अहमियत के बारे बताया और इस बात पर जोर दिया कि कैसे बहुपक्षीय संस्थाएं शांति निर्माण में मदद कर सकती हैं। 1980 में पोप जॉन पॉल द्वितीय ने यूनेस्को में एक ऐतिहासिक भाषण दिया था। यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी है, जो शिक्षा, विज्ञान एवं संस्कृति के माध्यम से शांति और सुरक्षा स्थापित करने के लिए समर्पित है। 46 साल बाद जब दुनिया में झगड़े और ध्रुवीकरण जारी हैं, बहुपक्षीय संस्थाएं संकट का सामना कर रही हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का तेजी से विकास चिंता का कारण बन रहा है। पोप लियो 14वें पेरिस में संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी यूनेस्को का दौरा करेंगे और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय एवं यूनेस्को साझेदारों और सहयोगी लोगों को संबोधित करेंगे। और इसी के साथ हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।

0: लौदेतुर येसुस क्रिस्तुस, प्रभु येसु मसीह की जय। आप सुन रहे हैं वैटिकन रेडियो। वैटिकन रेडियो के चैपल से पौत्र रोजरी माला विनते।
1: क्रूस का चिन्ह
2: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमेन।
1: प्रेरितों का धर्मसार,
2: स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पर मैं विश्वास करता हूँ, और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त

0: अब दुखों का न्याय करने फिर आएंगे। मैं पवित्र आत्मा, पवित्रता की कलीसिया, धर्मियों के संबंध, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन।
1: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
0: हमारे प्रतिदिन का आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब है और अनंतकाल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है, आमीन।
2: दुख के भेद। पहला भेद, बारी में प्रभु यीशु की प्राण पीड़ा।
0: मतलब हमें दुख तकलीफ में मदद मिले। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब है और अनंतकाल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है, आमीन।
2: दुख के दूसरा भेद। यीशु कोड़ों से मारे जाते हैं,
0: मतलब हमारे रिश्तेदारों की आत्मिक भलाई के लिए। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे

0: मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो।
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे। आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है। आमीन।
2: दुख का तीसरा भेद। प्रभु यीशु को सर पर कांटों का मुकुट पहनाया जाता है।
0: मतलब हम दुख में ना कुरकुराएं। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे

0: मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे। आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है। आमीन।
2: दुख का चौथा भेद, प्रभु यीशु अपने कंधों पर भारी क्रूस उठाते हैं,
0: मतलब हमारा मरण पवित्र हो। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है, आमीन।
2: दुख का पांचवा भेद, प्रभु यीशु को क्रूस पर ठोंका जाता है,
0: मतलब शोधक अग्नि की आत्माओं के लिए। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: या कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है।

0: कुंवारी मरियम की स्तुति विनती। प्रभु दया कर,
1: प्रभु दया कर,
0: ख्रिस्त दया कर,
1: ख्रिस्त दया कर,
0: प्रभु दया कर,
1: प्रभु दया कर,
0: ख्रिस्त हमारी सुन,
1: ख्रिस्त हमारी विनती पूरी कर।
0: स्वर्ग के पिता ईश्वर,
1: हम पर दया कर।
0: पुत्र ईश्वर दुनिया के मुक्तिदाता,
1: हम पर दया कर।
0: पवित्र आत्मा ईश्वर,
1: हम पर दया कर।
0: संत मरियम,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: ईश्वर की पवित्र माँ,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: कुंवारियों की पवित्र कुंवारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: ख्रिस्त की माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: ईश्वरीय कृपा की माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: अति निर्मल माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: अति शुद्ध माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: कुंवारी माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: निष्कलंक माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: प्रिय माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: प्रशंसनीय माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: सुसमति की माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: सृष्टिकर्ता की माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: मुक्तिदाता की माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: अति चौकस कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: आदरणीय कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: स्तुति योग्य कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: शक्तिमती कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: दयालु कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: धर्मनिष्ठ कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: हमारे आनंद का मूल,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: पवित्र आत्मा का मंदिर,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: आदरणीय पात्र,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: भक्ति का उत्तम पात्र,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: आध्यात्मिक गुलाब,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: दाऊद का गढ़,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: हस्तिदंत का गढ़,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: स्वर्ण मंदिर,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: संधि की मंजूषा,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: भोर का तारा,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: रोगियों का स्वास्थ्य,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: पापियों की शरण,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: दुखियों का दिलासा,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: ख्रिस्तियों की सहायता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: स्वर्गदूतों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: धर्म पुरखों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: नबियों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: प्रेरितों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: शहीदों की महारानी।

0: रानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: आदि पाप रहित उत्पन्न महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: स्वर्ग में उद्गृहित महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: अति पवित्र माला की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: शांति की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है,
1: प्रभु हमें क्षमा कर।
0: हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है,
1: प्रभु हमारी सुन।
0: हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है,
1: हम पर दया कर।
0: हम प्रार्थना करें। हे
1: हे
0: प्रभु
1: प्रभु
0: ईश्वर
1: ईश्वर,
0: कृपा।
1: कृपा

प्यारे मरियम की प्रार्थना द्वारा हमको इस लोक के दुख से मुक्त होकर अनंत सुख भोगने दे, क्रिस्त हमारे प्रभु के द्वारा, आमेन। पिता

0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं ताकि जीवन के लिए अति आवश्यक तत्व जल का सही और टिकाऊ प्रबंधन हो सके तथा सभी के लिए इसकी आपूर्ति समान रूप से हो सके। आमीन।
1: नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है संत पापा लियो चौधरी का फ्रांस की प्रेरितिक यात्रा का संक्षिप्त विवरण। कैथोलिक कलीसिया के वैश्विक धर्म गुरु संत पापा लियो चौदहवें ने अपनी पांचवी विश्व प्रेरितिक यात्रा शुरू की। संत पापा लियो चौदहवें ने 25 सितंबर की सुबह रोम के स्थानीय समय अनुसार 7:58 में ईटा हवाई जहाज A321 से उड़ान भरते हुए पेरिस के ओली हवाई पतन पर स्थानीय समय 9:56 में लैंड किया। संत पापा लियो चौदहवें के पूर्व संत पेत्रुस के उत्तराधिकारियों स्वरूप संत पापा जॉन पॉल द्वितीय ने फ्रांस की प्रेरितिक यात्रा 7 की। वहीं संत पापा बेनेडिक्ट 16 ने 2008 में फ्रांस की प्रेरितिक यात्रा पहली मर्तबा की, जबकि संत पापा फ्रांसिस ने सन 2014, 2023 और 2024 में फ्रांस की प्रेरितिक यात्रा की। संत पापा लियो चौदहवें की 25 से 28 सितंबर तक फ्रांस की प्रेरितिक यात्रा वार्ता स्मृति और उम्मीद की प्रेरितिक यात्रा होगी। अपनी 4 इस यात्रा के दौरान संत पापा लियो शांति, संस्कृति और एकता जैसे विषयों पर बातें करते हुए फ्रांसीसी अधिकारियों, नागर समाज के अधिकारियों के अलावे यूनेस्को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के प्रतिनिधियों से भेंट करेंगे। फ्रांस की राजधानी पेरिस में वे युवाओं, स्थानीय कलिसिया और सिनोडल असेंबली के सदस्यों के साथ साथ कलिसिया में दीक्षा प्राप्त से भी भेंट करेंगे। इस यात्रा का एक मजबूत सामाजिक आयाम बखिता निवास की भेंट भी होगी, जो सामाजिक कार्य का एक संस्थान है। इसके साथ ही संत पापा लूर्द की भेंट करते हुए नोटरडेम की देख रेख में संलग्न लोगों से मुलाकात करेंगे। मरियम के इस तीर्थ स्थल में संत पापा लियो प्रार्थना में कुछ पल अपना समय व्यतीत करते हुए समर्पित जीवन के लोगों के समुदाय और अति संवेदनशील लोगों, विशेषकर कुछ एक उन लोगों से व्यक्तिगत मुलाकात करेंगे जिन्हें कलिसिया में दुराचार का शिकार होना पड़ा है। संत पापा लियो चौदहवें की प्रेरितिक यात्रा का अंतिम पड़ाव मेट्स होगा, जो 3 को मिलाने वाला एक शहर है, जिसके ऐतिहासिक बाहरी हिस्से आज भी 2 के गवाह देते हैं। संत पापा लियो अलग अलग धर्मों के लोगों से भेंट करते हुए शांति और एकता हेतु यूरोप की जड़ें एक कार्यक्रम में सहभागी होंगे, जिनमें वे लोगों के बीच शांति और एकता की अपील करेंगे और इसके साथ ही अपनी प्रेरितिक यात्रा का समापन यूखारिस्तीय बलिदान से करेंगे। वैटिकन रेडियो संपादक विभाग के अधिकारी अंद्रिया तोर्नेल्ली ने संत पापा लियो चौदहवें की इस प्रेरितिक यात्रा के संबंध में अपने बुधवारीय संपादकीय में लिखा कि यह एक खास प्रेरितिक यात्रा है, जिसका उद्देश्य फ्रांसीसी समुदायों में उनके विश्वास को मजबूत करना है और साथ ही शांति और एकता का संदेश देना है। ज्योति के शहर में संत पापा लियो की यह प्रेरितिक यात्रा किसी को दोष देने हेतु नहीं और न ही फ्रांस की राजनीतिक स्थिति पर वाद विवाद करने का है, बल्कि उनका उद्देश्य लोगों, उनके इतिहास और उनकी संस्कृति से मिलन का है। फ्रांस की उनकी यह प्रेरितिक यात्रा उन लोगों को हिम्मत देने आना है जो अमानवता के आगे हार नहीं मानते और नहीं झुकते हैं। वे सुसमाचार के वचनों को लेकर जाते हैं, लेकिन सुसमाचार के उन वचनों को नहीं जो हवा में लटकती हो या जिसे सिर्फ विचारों या संदेशों तक सीमित रखा जाता हो। इसके बदले वे उन वचनों को लेकर जाते हैं, आंद्रिया तोर्नेल्ली ने लिखा, जो शरीर के रूप में मानव इतिहास में प्रवेश किया, हमारे समय के घावों से अपने को लड़खड़ाता पाया और हमारे बीच उस सत्य की ज्योति को प्रसारित किया जो झूठेपन के धुंध को हमसे दूर करती है। यह हमारे लिए एक वह वचन है जो दूसरों के दुखों से, युद्ध की गोलाबारी से घायल होने का निमंत्रण देती है, जो राजनैतिक सक्रियता और निष्ठा में रोकी जा सकती है। आंद्रिया ने लिखा, यह एक ऐसा शब्द है जो हमें यह जिम्मेदारी देता है कि हम उन लोगों के चेहरे से मुंह ना मोड़ें जो भविष्य की तलाश में भूमध्य सागरीय प्रांत पार करते हुए पुरानी महाद्वीप में जीवन की खोज हेतु आते हैं। फ्रांस की इस जमीन से, जिसे अपनी पुरानी जड़ों, अपने इतिहास और दुनिया में अपनी भूमिका पर बहुत गर्व है, संत पापा लियो 14वें पूरे यूरोप से बात करेंगे। एक ऐसा यूरोप जो अपनी पहचान खोने, युद्ध की चाह रखने वाली और तकनीकी सोच की खाई में गिरने का खतरा झेल रहा है और इसके बजाय उसे अपनी एकता, शांति की खोज करने की जरूरत है, जहां हर मानव की मानवीय गरिमा को हर स्थिति में बचाने की जरूरत है। इस प्रेरितिक यात्रा का लोगो एक गोल रंगीन कांच की खिड़की है जो गोथिक महागिरजाघर के गुलाब की खिड़कियों की याद दिलाती है, जो कलिसिया में मेल जोल और एकता की सुंदरता को अभिव्यक्त करता है। बीच में नुकीला मेहराब और क्रूस यात्रा के प्रेरितिक और धार्मिक आयाम को व्यक्त करते हैं। इस संरचना में मंडराता कबूतर पवित्र आत्मा की निशानी है जो एक जैतून की डाली लिए हुए है। यह पूरी मानवता में शांति की निशानी को व्यक्त करता है। नीले, सफेद और लाल रंग के छाया, रोशनी और पीले, नारंगी और उम्मीद का हरा रंग फ्रांस के रंगों को वैटिकन के रंगों से मिलाता है, जो इस प्रेरितिक यात्रा के आध्यात्मिक पहलू को दर्शाती है। इस प्रेरितिक यात्रा का आदर्श वाक्य, जिससे दुनिया को जीवन मिले, संत योहन के सुसमाचार से उद्धृत है। यह मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त में हमें मिले सबसे बड़े उपहार को पहचानने का एक निमंत्रण है। यह उम्मीद और मेल मिलाप का आह्वान है जो हमें दुनिया में नई जिंदगी के संकेतों, शांति, मेल मिलाप और भाईचारा साझा करने हेतु मतभेदों को दूर करने के लिए साहस देता है। आदर्श वाक्य में हम फ्रांस के कलिसिया में संत पापा के स्वागत की खुशी और जिंदगी से सबों के लिए साक्ष्य की गहरी चाह को पाते हैं जो हमें ईश्वर से मिली है। करीबन 2 घंटे की हवाई यात्रा के उपरांत पेरिस एयरपोर्ट पहुंचने पर संत पापा का गर्मजोशी स्वागत किया गया, जिसकी अगुवाई फ्रांसीसी गणराज्य के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने की। छोटे स्वागत समारोह के उपरांत संत पापा लियो को राजकीय सम्मान के साथ हवाई पतन से 19 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित राष्ट्रपति भवन एलेसियो लाया गया, जहां उन्होंने नागर अधिकारियों और देश के नेताओं को संबोधित किया।
0: पोप ने कहा, राष्ट्रपति महोदय, विशिष्ट अधिकारी और राजनयिकों एवं देवियों और सज्जनों, आज आपके बीच आकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं विशेष रूप से राष्ट्रपति महोदय को फ्रांस की यात्रा हेतु उनके निमंत्रण के लिए धन्यवाद देता हूँ। आपके स्वागत के शब्दों के लिए धन्यवाद। विविध संस्कृति एवं धार्मिक परंपरा से समृद्ध देश के लोगों का अभिवादन करते हुए पोप ने उन्हें अपनी प्रार्थना का आश्वासन दिया। संत पापा ने कहा, फ्रांस की मेरी यात्रा पेरिस से शुरू हो रही है, जो देश की राजधानी है, जिससे अक्सर प्रकाश के शहर के नाम से जाना जाता है। सदियों से फ्रांस न सिर्फ यूरोप के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक सांस्कृतिक, कलात्मक और आध्यात्मिक रोशनी की किरण रहा है। प्रेरितिक यात्रा के आदर्श वाक्य, ताकि दुनिया में जीवन हो, पर ध्यान देते हुए पोप ने कहा, अपने महागिरजाघर, स्कूलों, विश्वविद्यालयों एवं शैक्षणिक संस्थानों के साथ सच्चाई की खोज के लिए समर्पित होकर फ्रांस ने अपनी सीमाओं से बहुत दूर तक लोगों के दृष्टिकोण को बनाने में मदद की है।
2: कई प्रतिभाशाली फ्रांसीसी विद्वान जो पक्के कैथोलिक भी थे, यह स्पष्ट दिखाते हैं कि कैसे विज्ञान एवं कला, साहित्य और दर्शन शास्त्र मानवता की भलाई में योगदान दे सकते हैं, जब उन्हें सुंदरता, अच्छाई और सच्चाई की खोज में लगाया जाए ताकि दुनिया में जीवन हो सके। पोप ने फ्रांस की समृद्धि पर भी गौर किया, जो कई क्षेत्रों में बेहतरीन रहा है। इसका एक उदाहरण है पेरिस में नोटरडम महागिरजा घर की मरम्मत, जिसमें शुरू से ही कई निजी एवं सार्वजनिक संस्थान शामिल थे। पोप ने इस बड़ी परियोजना को सफल बनाने के लिए राष्ट्रपति को उनके समर्पण के लिए धन्यवाद दिया। पोप ने ईश्वर की उपासना के लिए महागिरजा घर को फिर से खोलने और दुनिया भर के आगंतुकों के लिए इसे उपलब्ध कराने को न केवल शानदार तकनीकी उपलब्धि कहा, बल्कि नई उम्मीद का प्रतीक बताया, क्योंकि जिस चीज को पूरी तरह से खत्म माना जाता था उसे आपसी सहयोग से फिर जिंदा किया गया है, जो एकता का एक प्रभावशाली सबूत है। अतः संत पापा ने सभी नेताओं को एकजुट होकर काम करने का प्रोत्साहन देते हुए कहा, यह शानदार उपलब्धि देश की राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक जीवन के लिए जिम्मेदार सभी लोगों को एक मजबूत और जिंदा उम्मीद से प्रेरित होकर बिना थके और एक साथ काम करने के लिए हिम्मत प्रदान करे। फ्रांस की दूसरी विशेषता पर ध्यान आकृष्ट करते हुए पोप ने कहा कि इसकी ख्रिस्तीय जड़ें बहुत गहरी हैं। संत एरेनियस के समय और राजा क्लोविस प्रथम के बपतिस्मा ग्रहण करने के द्वारा देश की आत्मा ने ख्रिस्तीय धर्म से एक समृद्ध आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, बौद्धिक, कलात्मक और मिशनरी उत्साह लिया है, जो आज भी हमारी दुनिया में महसूस किया जाता है। इसलिए 16वीं सदी के फ्रांस में मानवतावाद फला फूला, जो क्लासिकल ग्रीस और रोम की विरासत को ख्रिस्तीय धर्म के साथ जोड़ने का एक तरीका था। पुनर्जागरण और बाद में महान विचारकों के द्वारा फ्रांस ने दुनिया में तरक्की के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जिसमें मानव के स्वभाव पर आधारित मानव अधिकारों, खासकर धार्मिक स्वतंत्रता को मान्यता देना शामिल है। उन्होंने स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा को स्वाभाविक नैतिक जरूरत बताया, जो सुसमाचार के संदेश में भी प्रेरणा और पूर्णता का एक कभी न खत्म होने वाला स्रोत है। आज दुनिया में विज्ञान के माध्यम से हर प्रकार के दुखों को दूर करने का प्रलोभन है, जो अक्सर आत्म भ्रम का खतरा उत्पन्न करता है, क्योंकि जब विज्ञान एवं तकनीकी गहरी समझ से संचालित नहीं होते तो वे तुरंत ऐसे हल दे सकते हैं जो लोगों की इच्छाओं और उनके दर्द को तो ठीक करते हैं, लेकिन उन्हें उस महान भलाई से भटका सकते हैं जिसकी वे उम्मीद करते हैं। संत पापा ने विज्ञान एवं तकनीकी से लाभ कमाने के लिए उन कृत्यों के लिए चिंता जताई जो अनुवांशिक हेरफेर, सर्वोगेसी, मानव अंगों के व्यापार या खुद की मौत का इंतजाम करने की संभावना को बढ़ावा देते हैं। उन्होंने कहा, हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि आपसी सम्मान और हर इंसान की जान की सुरक्षा हम में से हर एक का कर्तव्य है। इसलिए संत पापा ने देश के नेताओं और प्रतिनिधियों से आग्रह करते हुए कहा, मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि युद्ध की संभावना से कभी हार ना माने, बल्कि बातचीत और कूटनीति को बढ़ावा देने में लगे रहें, ताकि ऐसे शांतिपूर्ण समाज बनाए जा सकें जो लोगों और मानव प्रतिष्ठा एवं अधिकारों का सम्मान करें। फ्रांस अपने पारंपरिक मूल्यों के प्रति वफादार रहकर ऐसी शांति के लिए काम करे जो निरस्त्रीकृत एवं बिना हथियार के हो। आपकी स्वतंत्रता आम भलाई की लगातार चिंता में बढ़े। आपका भाईचारा पूरे मानव परिवार को अपनाएं और जिस बराबरी की आप ख्वाहिश रखते हैं वह हमेशा न्याय एवं दया की नींव पर बनी हो। लोगों के बीच की विविधताओं को मिटाकर नहीं, बल्कि उन्हें पूरे समाज के लाभ के लिए मिलजुल कर फलने फूलने देकर। संत पापा ने अंत में कहा, मैं एक बार फिर इस मुलाकात के लिए आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आपके महान देश के लिए मेरी हार्दिक प्रार्थनाओं का आश्वासन देता हूँ। ईश्वर इसे शांति, एकता एवं खुशहाली दे ताकि दुनिया में जीवन हो। मैं इन उम्मीदों को फ्रांस की संरक्षिका धन्य कुंवारी मरियम की ममता में प्रार्थना को सुपुर्द करता हूँ। ईश्वर फ्रांस एवं सभी फ्रांसीसी लोगों को आशीर्वाद दें।
1: दोपहर भोजन के उपरांत संत पापा ने यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन, साइंटिफिक और कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन की भेंट की और वहां उन्होंने यूनाइटेड नेशन के सदस्यों, सदस्य देशों, यूनेस्को के सदस्यों को संबोधित किया।
3: संत पापा ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के प्रतिनिधियों को अपने संबोधन में कहा, महानिदेशक महोदय, महासभा के अध्यक्ष महोदय, कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष महोदय, माननीय गणमान्य अतिथिगण, देवियों और सज्जनों, मुझे आज इस अंतर्राष्ट्रीय सभा में आपके साथ शामिल होकर खुशी हो रही है, जहां भाषाएं और संस्कृतियां मिलकर पूरे मानव परिवार के लिए बहुत महत्वपूर्ण काम में सहयोग करती हैं। शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति के जरिए देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देकर शांति और सुरक्षा में योगदान देना, ताकि न्याय, कानून के शासन और मानवाधिकारों व बुनियादी आज़ादी के लिए सार्वभौमिक सम्मान को और बढ़ाया जा सके। एक न्यायपूर्ण दुनिया बनाने की कोशिश ही असल में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का आधार है। हम अपने अनुभव और विशेषज्ञता को साझा करते हैं, ताकि ऐसा माहौल बनाया जा सके जिसमें हर कोई अपनापन महसूस करे और हर व्यक्ति तरक्की कर सके, ताकि हर जगह लोग शांति से रह सके और खुशहाल हो सके। संत पापा शांति के एक गवाह के तौर पर वहां उपस्थित सभी का स्वागत किया। संत पापा ने कहा कि वे एक धर्माध्यक्ष के रूप में कलीसिया की ओर से यह बताने आए हैं कि कलीसिया हमेशा बातचीत की कोशिश करती है और हर व्यक्ति और नेक नियत वाले सभी स्त्री पुरुषों तक अपना संदेश पहुंचाना चाहती है। संत पापा ने कहा कि एक न्यायपूर्ण दुनिया बनाने का संकल्प उस मिशन का हिस्सा है जिसे हमने इतिहास के दौरान साझा करना सीखा है। आज के समय में यूनेस्को हमारे काम के अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से उस प्रतिबद्धता को और ज्यादा मजबूती से पूरा करने का एक लक्ष्य और जरिया दोनों है। साल 2027 में यूनेस्को में परम धर्मपीठ के स्थायी पर्यवेक्षक मिशन के 75वें साल पूरे होंगे। यह इस भरोसे पर टिकी है कि भविष्य सबसे पहले इस बात पर निर्भर करता है कि ईश्वर के स्वरूप में रचे गए हर पुरुष और महिला की जन्मजात गरिमा का सम्मान किया जाए और उसे बढ़ावा दिया जाए। 1952 से परम धर्मपीठ के स्थायी पर्यवेक्षक मिशन इस नजरिए से यूनेस्को की पहलों की समीक्षा करता रहा है और उनमें सहयोग देता रहा है, साथ ही देशों के बीच बातचीत में अपना खास योगदान भी देता रहा है। ऐसा उसने सच्चे मानवीय विकास को बढ़ावा देने के मकसद से किया है, और विकास सच्चा तभी होता है जब वह हर इंसान और पूरे इंसान के विकास को बढ़ावा देने की दिशा में हो। संत पापा ने याद किया कि 46 साल पहले इस सभा को संबोधित करते हुए संत पापा जॉन पॉल द्वितीय ने कहा था कि मानव जाति कला और तर्क के माध्यम से जीती है। नतीजतन संस्कृति की बदौलत ही मनुष्य वास्तव में मानवीय जीवन जीता है। संस्कृति शब्द का अर्थ ही उस प्रक्रिया से है जिसके द्वारा मानवता अपनी सभी गतिविधियों को अर्थ प्रदान करती है। संत पापा ने कहा कि वे परम धर्म पीठ की प्रतिबद्धता को दोहरा रहे हैं। वे यूनेस्को को न केवल एक प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में देखने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, बल्कि एक ऐसी जगह के रूप में भी देखने के लिए कहते हैं जहां मानवता स्वयं पर, अपने इतिहास और अपने भविष्य पर चिंतन कर सकती है। संत पापा ने कहा, आज के दौर में कई मुश्किल और जरूरी मुद्दों के बीच हमारी दुनिया अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को मिली जुली भावनाओं से देखती है। एक तरफ इन संस्थाओं से ऐसी चुनौतियों का सामना करने की उम्मीद की जाती है जिनसे कोई भी अकेला देश नहीं निपट सकता, दूसरी तरफ इन्हीं संस्थाओं को अपनी असरदार भूमिका निभाने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, खासकर तब जब बातचीत को शांति का जरिया या मिलकर भलाई करने के मौके के बजाय कार्यवाही में रुकावट या सिर्फ दिखावा माना जाता है। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं ताकि जीवन के लिए अति आवश्यक तत्व जल का सही और टिकाऊ प्रबंधन हो सके तथा सभी के लिए इसकी आपूर्ति समान रूप से हो सके। आमीन।
1: नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है संत पापा लियो चौधरी का फ्रांस की प्रेरित यात्रा का संक्षिप्त विवरण। कैथोलिक कलीसिया के वैश्विक धर्म गुरु संत पापा लियो चौधरी ने अपनी पांचवी विश्व प्रेरित यात्रा शुरू की। संत पापा लियो चौधरी ने 25 सितंबर की सुबह रोम के स्थानीय समय अनुसार 7:58 में ईटा हवाई जहाज A321 से उड़ान भरते हुए पेरिस के ओली हवाई पतन पर स्थानीय समय 9:56 में लैंड किया। संत पापा लियो चौधरी के पूर्व संत पेत्रुस के उत्तराधिकारियों स्वरूप संत पापा जॉन पॉल द्वितीय ने फ्रांस की प्रेरित यात्रा 7 की। वहीं संत पापा बेनेडिक्ट 16 ने 2008 में फ्रांस की प्रेरित यात्रा पहली मर्तबा की, जबकि संत पापा फ्रांसिस ने सन 2014, 2023 और 2024 में फ्रांस की प्रेरित यात्रा की। संत पापा लियो चौधरी की 25 से 28 सितंबर तक फ्रांस की प्रेरित यात्रा वार्ता स्मृति और उम्मीद की प्रेरित यात्रा होगी। अपनी 4 इस यात्रा के दौरान संत पापा लियो शांति, संस्कृति और एकता जैसे विषयों पर बातें करते हुए फ्रांसीसी अधिकारियों, नागर समाज के अधिकारियों के अलावे यूनेस्को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के प्रतिनिधियों से भेंट करेंगे। फ्रांस की राजधानी पेरिस में वे युवाओं, स्थानीय कलिसिया और सिनोडल असेंबली के सदस्यों के साथ साथ कलिसिया में दीक्षा प्राप्त से भी भेंट करेंगे। इस यात्रा का एक मजबूत सामाजिक आयाम बखिता निवास की भेंट भी होगी, जो सामाजिक कार्य का एक संस्थान है। इसके साथ ही संत पापा लूर्द की भेंट करते हुए नोटरडेम की देखरेख में संलग्न लोगों से मुलाकात करेंगे। मरियम के इस तीर्थ स्थल में संत पापा लियो प्रार्थना में कुछ पल अपना समय व्यतीत करते हुए समर्पित जीवन के लोगों के समुदाय और अति संवेदनशील लोगों, विशेषकर कुछ एक उन लोगों से व्यक्तिगत मुलाकात करेंगे जिन्हें कलिसिया में दुराचार का शिकार होना पड़ा है। संत पापा लियो चौदहवीं की प्रेरित यात्रा का अंतिम पड़ाव मेट्स होगा, जो 3 सीमाओं को मिलाने वाला एक शहर है, जिसके ऐतिहासिक बाहरी हिस्से आज भी दूसरे विश्व युद्ध के गवाह देते हैं। संत पापा लियो अलग अलग धर्मों के लोगों से भेंट करते हुए शांति और एकता हेतु यूरोप की जड़ें एक कार्यक्रम में सहभागी होंगे, जिनमें वे लोगों के बीच शांति और एकता की अपील करेंगे और इसके साथ ही अपनी प्रेरित यात्रा का समापन यूखारिस्तीय बलिदान से करेंगे। वैटिकन रेडियो संपादक विभाग के अधिकारी अंद्रिया तोर्नेल्ली ने संत पापा लियो चौदहवें की इस प्रेरित यात्रा के संबंध में अपने बुधवारीय संपादकीय में लिखा कि यह एक खास प्रेरित यात्रा है, जिसका उद्देश्य फ्रांसीसी समुदायों में उनके विश्वास को मजबूत करना है और साथ ही शांति और एकता का संदेश देना है। ज्योति के शहर में संत पापा लियो की यह प्रेरित यात्रा किसी को दोष देने हेतु नहीं और ना ही फ्रांस की राजनीतिक स्थिति पर वाद विवाद करने का है, बल्कि उनका उद्देश्य लोगों, उनके इतिहास और उनकी संस्कृति से मिलन का है। फ्रांस की उनकी यह प्रेरित यात्रा उन लोगों को हिम्मत देने आना है जो अमानवता के आगे हार नहीं मानते और नहीं झुकते हैं। वे सुसमाचार के वचनों को लेकर जाते हैं, लेकिन सुसमाचार के उन वचनों को नहीं जो हवा में लटकती हो या जिसे सिर्फ विचारों या संदेशों तक सीमित रखा जाता हो। इसके बदले वे उन वचनों को लेकर जाते हैं, आंद्रिया तोर्नेल्ली ने लिखा, जो शरीर के रूप में मानव इतिहास में प्रवेश किया, हमारे समय के घावों से अपने को लड़खड़ाता पाया और हमारे बीच उस सत्य की ज्योति को प्रसारित किया जो झूठेपन के धुंध को हमसे दूर करती है। यह हमारे लिए एक वह वचन है जो दूसरों के दुखों से, युद्ध की गोलाबारी से घायल होने का निमंत्रण देती है, जो राजनैतिक सक्रियता और निष्ठा में रोकी जा सकती है। आंद्रिया ने लिखा, यह एक ऐसा शब्द है जो हमें यह जिम्मेदारी देता है कि हम उन लोगों के चेहरे से मुंह ना मोड़ें जो भविष्य की तलाश में भूमध्य सागरीय प्रांत पार करते हुए पुरानी महाद्वीप में जीवन की खोज हेतु आते हैं। फ्रांस की इस जमीन से, जिसे अपनी पुरानी जड़ों, अपने इतिहास और दुनिया में अपनी भूमिका पर बहुत गर्व है, संत पापा लियो 14वें पूरे यूरोप से बात करेंगे। एक ऐसा यूरोप जो अपनी पहचान खोने, युद्ध की चाह रखने वाली और तकनीकी सोच की खाई में गिरने का खतरा झेल रहा है और इसके बजाय उसे अपनी एकता, शांति की खोज करने की जरूरत है, जहां हर मानव की मानवीय गरिमा को हर स्थिति में बचाने की जरूरत है। इस प्रेरितिक यात्रा का लोगो एक गोल रंगीन कांच की खिड़की है जो गोथिक महागिरजाघर के गुलाब की खिड़कियों की याद दिलाती है, जो कलिसिया में मेल जोल और एकता की सुंदरता को अभिव्यक्त करता है। बीच में नुकीला मेहराब और क्रूस यात्रा के प्रेरितिक और धार्मिक आयाम को व्यक्त करते हैं। इस संरचना में मंडराता कबूतर पवित्र आत्मा की निशानी है जो एक जैतून की डाली लिए हुए है। यह पूरी मानवता में शांति की निशानी को व्यक्त करता है। नीले, सफेद और लाल रंग के छाया, रोशनी और पीले, नारंगी और उम्मीद का हरा रंग फ्रांस के रंगों को वैटिकन के रंगों से मिलाता है, जो इस प्रेरितिक यात्रा के आध्यात्मिक पहलू को दर्शाती है। इस प्रेरितिक यात्रा का आदर्श वाक्य, जिससे दुनिया को जीवन मिले, संत योहन के सुसमाचार से उद्धृत है। यह मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त में हमें मिले सबसे बड़े उपहार को पहचानने का एक निमंत्रण है। यह उम्मीद और मेल मिलाप का आह्वान है जो हमें दुनिया में नई जिंदगी के संकेतों, शांति, मेल मिलाप और भाईचारा साझा करने हेतु मतभेदों को दूर करने के लिए साहस देता है। आदर्श वाक्य में हम फ्रांस के कलिसिया में संत पापा के स्वागत की खुशी और जिंदगी से सबों के लिए साक्ष्य की गहरी चाह को पाते हैं जो हमें ईश्वर से मिली है। करीबन 2 घंटे की हवाई यात्रा के उपरांत पेरिस एयरपोर्ट पहुंचने पर संत पापा का गर्मजोशी स्वागत किया गया, जिसकी अगुवाई फ्रांसीसी गणराज्य के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने की। छोटे स्वागत समारोह के उपरांत संत पापा लियो को राजकीय सम्मान के साथ हवाई पतन से 19 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित राष्ट्रपति भवन एलेसियो लाया गया, जहां उन्होंने नागर अधिकारियों और देश के नेताओं को संबोधित किया।
0: पोप ने कहा, राष्ट्रपति महोदय, विशिष्ट अधिकारी और राजनयिकों एवं देवियों और सज्जनों, आज आपके बीच आकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं विशेष रूप से राष्ट्रपति महोदय को फ्रांस की यात्रा हेतु उनके निमंत्रण के लिए धन्यवाद देता हूँ। आपके स्वागत के शब्दों के लिए धन्यवाद। विविध संस्कृति एवं धार्मिक परंपरा से समृद्ध देश के लोगों का अभिवादन करते हुए पोप ने उन्हें अपनी प्रार्थना का आश्वासन दिया। संत पापा ने कहा, फ्रांस की मेरी यात्रा पेरिस से शुरू हो रही है, जो देश की राजधानी है, जिससे अक्सर प्रकाश के शहर के नाम से जाना जाता है। सदियों से फ्रांस न सिर्फ यूरोप के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक सांस्कृतिक, कलात्मक और आध्यात्मिक रोशनी की किरण रहा है। प्रेरितिक यात्रा के आदर्श वाक्य, ताकि दुनिया में जीवन हो, पर ध्यान देते हुए पोप ने कहा, अपने महागिरजाघर, स्कूलों, विश्वविद्यालयों एवं शैक्षणिक संस्थानों के साथ सच्चाई की खोज के लिए समर्पित होकर फ्रांस ने अपनी सीमाओं से बहुत दूर तक लोगों के दृष्टिकोण को बनाने में मदद की है।
2: कई प्रतिभाशाली फ्रांसीसी विद्वान जब पक्के कैथोलिक भी थे, यह स्पष्ट दिखाते हैं कि कैसे विज्ञान एवं कला, साहित्य और दर्शन शास्त्र मानवता की भलाई में योगदान दे सकते हैं, जब उन्हें सुंदरता, अच्छाई और सच्चाई की खोज में लगाया जाए ताकि दुनिया में जीवन हो सके। पोप ने फ्रांस की समृद्धि पर भी गौर किया, जो कई क्षेत्रों में बेहतरीन रहा है। इसका एक उदाहरण है पेरिस में नोट्रडम महागिरजाघर की मरम्मत, जिसमें शुरू से ही कई निजी एवं सार्वजनिक संस्थान शामिल थे। पोप ने इस बड़ी परियोजना को सफल बनाने के लिए राष्ट्रपति को उनके समर्पण के लिए धन्यवाद दिया। पोप ने ईश्वर की उपासना के लिए महागिरजाघर को फिर से खोलने और दुनिया भर के आगंतुकों के लिए इसे उपलब्ध कराने को न केवल शानदार तकनीकी उपलब्धि कहा, बल्कि नई उम्मीद का प्रतीक बताया, क्योंकि जिस चीज को पूरी तरह से खत्म माना जाता था उसे आपसी सहयोग से फिर जिंदा किया गया है, जो एकता का एक प्रभावशाली सबूत है। अतः संत पापा ने सभी नेताओं को एकजुट होकर काम करने का प्रोत्साहन देते हुए कहा, यह शानदार उपलब्धि देश की राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक जीवन के लिए जिम्मेदार सभी लोगों को एक मजबूत और जिंदा उम्मीद से प्रेरित होकर बिना थके और एक साथ काम करने के लिए हिम्मत प्रदान करे। फ्रांस की दूसरी विशेषता पर ध्यान आकृष्ट करते हुए पोप ने कहा कि इसकी ख्रिस्तीय जड़ें बहुत गहरी हैं। संत एरेनियस के समय और राजा क्लोविस प्रथम के बपतिस्मा ग्रहण करने के द्वारा देश की आत्मा ने ख्रिस्तीय धर्म से एक समृद्ध आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, बौद्धिक, कलात्मक और मिशनरी उत्साह लिया है, जो आज भी हमारी दुनिया में महसूस किया जाता है। इसलिए 16वीं सदी के फ्रांस में मानवतावाद फला फूला, जो क्लासिकल ग्रीस और रोम की विरासत को ख्रिस्तीय धर्म के साथ जोड़ने का एक तरीका था। पुनर्जागरण और बाद में महान विचारकों के द्वारा फ्रांस ने दुनिया में तरक्की के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जिसमें मानव के स्वभाव पर आधारित मानव अधिकारों, खासकर धार्मिक स्वतंत्रता को मान्यता देना शामिल है। उन्होंने स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा को सार्वभौमिक नैतिक जरूरत बताया, जो सुसमाचार के संदेश में भी प्रेरणा और पूर्णता का एक कभी न खत्म होने वाला स्रोत है। आज दुनिया में विज्ञान के माध्यम से हर प्रकार के दुखों को दूर करने का प्रलोभन है, जो अक्सर आत्म भ्रम का खतरा उत्पन्न करता है, क्योंकि जब विज्ञान एवं तकनीकी गहरी समझ से संचालित नहीं होते तो वे तुरंत ऐसे हल दे सकते हैं जो लोगों की इच्छाओं और उनके दर्द को तो ठीक करते हैं, लेकिन उन्हें उस महान भलाई से भटका सकते हैं जिसकी वे उम्मीद करते हैं। संत पापा ने विज्ञान एवं तकनीकी से लाभ कमाने के लिए उन कृत्यों के लिए चिंता जताई जो अनुवांशिक हेरफेर, सर्वोगेसी, मानव अंगों के व्यापार या खुद की मौत का इंतजाम करने की संभावना को बढ़ावा देते हैं। उन्होंने कहा, हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि आपसी सम्मान और हर इंसान की जान की सुरक्षा हम में से हर एक का कर्तव्य है। इसलिए संत पापा ने देश के नेताओं और प्रतिनिधियों से आग्रह करते हुए कहा, मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि युद्ध की संभावना से कभी हार ना माने, बल्कि बातचीत और कूटनीति को बढ़ावा देने में लगे रहें, ताकि ऐसे शांतिपूर्ण समाज बनाए जा सकें जो लोगों और मानव प्रतिष्ठा एवं अधिकारों का सम्मान करें। फ्रांस अपने पारंपरिक मूल्यों के प्रति वफादार रहकर ऐसी शांति के लिए काम करे जो निरस्त्रीकृत एवं बिना हथियार के हो। आपकी स्वतंत्रता आम भलाई की लगातार चिंता में बढ़े। आपका भाईचारा पूरे मानव परिवार को अपनाएं और जिस बराबरी की आप ख्वाहिश रखते हैं वह हमेशा न्याय एवं दया की नींव पर बनी हो। लोगों के बीच की विविधताओं को मिटाकर नहीं, बल्कि उन्हें पूरे समाज के लाभ के लिए मिलजुल कर फलने फूलने देकर। संत पापा ने अंत में कहा, मैं एक बार फिर इस मुलाकात के लिए आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपके महान देश के लिए मेरी हार्दिक प्रार्थनाओं का आश्वासन देता हूँ। ईश्वर इसे शांति, एकता एवं खुशहाली दे ताकि दुनिया में जीवन हो। मैं इन उम्मीदों को फ्रांस की संरक्षिका धन्य कुआरी मरियम की ममता में प्रार्थना को सपोर्ट करता हूँ। ईश्वर फ्रांस एवं सभी फ्रांसीसी लोगों को आशीर्वाद दें।
1: दोपहर भोजन के उपरांत संत पापा ने यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन, साइंटिफिक और कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन की भेंट की और वहां उन्होंने यूनाइटेड नेशन के सदस्यों, सदस्य देशों, यूनेस्को के सदस्यों को संबोधित किया।
3: संत पापा ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के प्रतिनिधियों को अपने संबोधन में कहा, महानिदेशक महोदय, महासभा के अध्यक्ष महोदय, कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष महोदय, माननीय गणमान्य अतिथिगण, देवियों और सज्जनों, मुझे आज इस अंतर्राष्ट्रीय सभा में आपके साथ शामिल होकर खुशी हो रही है, जहां भाषाएं और संस्कृतियां मिलकर पूरे मानव परिवार के लिए बहुत महत्वपूर्ण काम में सहयोग करती हैं। शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति के जरिए देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देकर शांति और सुरक्षा में योगदान देना, ताकि न्याय, कानून के शासन और मानवाधिकारों व बुनियादी आज़ादी के लिए सार्वभौमिक सम्मान को और बढ़ाया जा सके। एक न्यायपूर्ण दुनिया बनाने की कोशिश ही असल में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का आधार है। हम अपने अनुभव और विशेषज्ञता को साझा करते हैं, ताकि ऐसा माहौल बनाया जा सके जिसमें हर कोई अपनापन महसूस करे और हर व्यक्ति तरक्की कर सके, ताकि हर जगह लोग शांति से रह सकें और खुशहाल हो सकें। संत पापा शांति के एक गवाह के तौर पर वहां उपस्थित सभी का स्वागत किया। संत पापा ने कहा कि वे एक धर्माध्यक्ष के रूप में कलीसिया की ओर से यह बताने आए हैं कि कलीसिया हमेशा बातचीत की कोशिश करती है और हर व्यक्ति और नेक नियत वाले सभी स्त्री पुरुषों तक अपना संदेश पहुँचाना चाहती है। संत पापा ने कहा कि एक न्यायपूर्ण दुनिया बनाने का संकल्प उस मिशन का हिस्सा है जिसे हमने इतिहास के दौरान साझा करना सीखा है। आज के समय में यूनेस्को हमारे काम के अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से उस प्रतिबद्धता को और ज्यादा मजबूती से पूरा करने का एक लक्ष्य और जरिया दोनों है। साल 2027 में यूनेस्को में परम धर्म पीठ के स्थायी पर्यवेक्षक मिशन के 75वें साल पूरे होंगे। यह इस भरोसे पर टिकी है कि भविष्य सबसे पहले इस बात पर निर्भर करता है कि ईश्वर के स्वरूप में रचे गए हर पुरुष और महिला की जन्मजात गरिमा का सम्मान किया जाए और उसे बढ़ावा दिया जाए। 1952 से परम धर्म पीठ के स्थायी पर्यवेक्षक मिशन इस नजरिए से यूनेस्को की पहलों की समीक्षा करता रहा है और उनमें सहयोग देता रहा है, साथ ही देशों के बीच बातचीत में अपना खास योगदान भी देता रहा है। ऐसा उसने सच्चे मानवीय विकास को बढ़ावा देने के मकसद से किया है, और विकास सच्चा तभी होता है जब वह हर इंसान और पूरे इंसान के विकास को बढ़ावा देने की दिशा में हो। संत पापा ने याद किया कि 46 साल पहले इस सभा को संबोधित करते हुए संत पापा जॉन पॉल द्वितीय ने कहा था कि मानव जाति कला और तर्क के माध्यम से जीती है, नतीजतन संस्कृति की बदौलत ही मनुष्य वास्तव में मानवीय जीवन जीता है। संस्कृति शब्द का अर्थ ही उस प्रक्रिया से है जिसके द्वारा मानवता अपनी सभी गतिविधियों को अर्थ प्रदान करती है। संत पापा ने कहा कि वे परम धर्म पीठ की प्रतिबद्धता को दोहरा रहे हैं। वे यूनेस्को को न केवल एक प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में देखने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, बल्कि एक ऐसी जगह के रूप में भी देखने के लिए कहते हैं जहां मानवता स्वयं पर, अपने इतिहास और अपने भविष्य पर चिंतन कर सकती है। संत पापा ने कहा, आज के दौर में कई मुश्किल और जरूरी मुद्दों के बीच हमारी दुनिया अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को मिलीजुली भावनाओं से देखती है। एक तरफ इन संस्थाओं से ऐसी चुनौतियों का सामना करने की उम्मीद की जाती है जिनसे कोई भी अकेला देश नहीं निपट सकता, दूसरी तरफ इन्हीं संस्थाओं को अपनी असरदार भूमिका निभाने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, खासकर तब जब बातचीत को शांति का जरिया या मिलकर भलाई करने के मौके के बजाय कार्यवाही में रुकावट या सिर्फ दिखावा माना जाता है। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। नमस्कार।